0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: सोल्टा सोल्टिनी साइनो थापाएपछि नम्बरीलाई के चाहियो?

0: 다음은 비슷해요. 그래서 니 저희 말하는 거예요.
1: 아니 यहाँ तल लडेर बसिरहेर त मैले उठा ल्याएको
0: छैन
1: अनि म लगिदिइहाल्छु नि
0: म त फ्री भएर गएँ होली भनेर यहाँ रिक्सा